जमंगे रक्स करे, आओ सेने जमंगे रक्स करे, साज लेकर का डरे आंखी है, देख कर उनकी अखलियों को अदम, मेरों को हवाया उनकी है।